0: मत भागो और जिन नेमतों में तुम ऐशो आसाइश करते थे उनकी और अपने घरों की तरफ लौट जाओ, शायद तुमसे इस बारे में दरियाफ्त किया जाए।
1: قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ
0: कहने लगे, हाय शामत, बेशक हम जालिम थे।
1: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ
0: तो वो हमेशा इसी तरह पुकारते रहे यहां तक कि हमने उनको खेती की तरह काट कर और आग की तरह बुझाकर ढेर कर दिया।
1: वमा खलक

0: और कहते हैं कि खुदा बेटा रखता है, वो पाक है, उसके न बेटा है न बेटी, बल्कि जिनको ये लोग उसके बेटे बेटियां समझते हैं वो उसके इज्जत वाले बंदे हैं।
1: ला यस्बिकूनहु बिल्कौल वहुम बिअम्रिही यअमलून,
0: उसके आगे बढ़कर बोल नहीं सकते और उसके हुक्म पर अमल करते हैं।
1: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون,
0: जो कुछ उनके आगे हो चुका है और जो पीछे होगा वो सबसे वाकिफ है, और वो उसके पास किसी की सिफारिश नहीं कर सकते मगर उस शख्स की जिससे खुदा खुश हो, और वो उसकी हैबत से डरते रहते हैं।

और हमने जमीन में पहाड़ बनाए ताकि लोगों के बोझ से हिलने और झुकने न लगे, और इसमें कुशादा रास्ते बनाए ताकि लोग उन पर चलें।

0: इंसान कुछ ऐसा जल्दबाज है कि गोया जल्दबाजी ही से बनाया गया है। मैं तुम लोगों को अनकरीब अपनी निशानियां दिखाऊंगा तो तुम जल्दी न करो।
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ
0: और कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब की ये वईद है वो कब आएगा।
1: लव

0: क्या हमारे सिवा उनके और माबूद हैं कि उनको मसाइब से बचा सकें? वो आप अपनी मदद तो कर ही नहीं सकेंगे और न हमसे पनाह ही दिए जाएंगे।
1: बल मत्ताना उलाई व आबाहुम हत्ता ताला अला

0: और इब्राहिम और लूत को उस सरजमीन की तरफ बचा निकाला जिसमें हमने अहले आलम के लिए बरकत रखी थी।
1: वहबना लहू इसहाक व याकूब नाफिलन व कुल्लन जअलना सालिहीन।
0: और हमने इब्राहिम को इसहाक अता किए और मुस्तजाद बरआ याकूब और सबको नेक किया।

और उनको पेशवा बनाया कि हमारे हुक्म से हिदायत करते थे और उनको नेक काम करने और नमाज पढ़ने और जकात देने का हुक्म भेजा और वो हमारी इबादत किया करते थे।

0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: वक्फे के बाद खुशामदीद। अबू जहल का कत्ल। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि मैं जंगे बदर के रोज सफ के अंदर था कि अचानक मुड़ा तो क्या देखता हूँ कि दाएं बाएं दो नौ उम्र जवान हैं। गोया उनकी मौजूदगी से मैं हैरान हो गया कि इतने में एक ने अपने साथी से छुपा कर मुझसे कहा, चचा जान मुझे अबू जहल को दिखला दीजिए। मैंने कहा, भतीजे तुम उसे क्या करोगे? उसने कहा, मुझे बताया गया है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देता है। उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर मैंने उसको देख लिया तो मेरा वजूद उसके वजूद से अलग न होगा, यहाँ तक कि हम में से जिसकी मौत पहले लिखी है वो मर जाए। वो कहते हैं कि मुझे इस पर ताज्जुब हुआ। इतने में दूसरे शख्स ने मुझे इशारे से मतवज्जो करके यही बात कही। उनका बयान है कि मैंने चंद ही लम्हों बाद देखा कि अबू जहल लोगों के दरमियान चक्कर काट रहा है। मैंने कहा, अरे देखते नहीं, ये रहा तुम दोनों का शिकार जिसके बारे में तुम पूछ रहे थे। उनका बयान है कि ये सुनते ही वो दोनों अपनी तलवारें लिए झपट पड़े और उसे मार कर कत्ल कर दिया। फिर पलट कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने से किसने कत्ल किया है? दोनों ने कहा, मैंने कत्ल किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी अपनी तलवारें पहुंच चुके हो। बोले, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की तलवारें देखी और फरमाया, तुम दोनों ने कत्ल किया है। अलबत्ता अबू जहल का सामान मुआज़ बिन अमरु बिन जमू को दिया। दोनों हमलावरों का नाम मुआज़ बिन अमरु बिन जमू और माज़ बिन अफरा है। इब्ने इसहाक़ का बयान है कि मुआज़ बिन अमरु बिन जमू ने बतलाया कि मैंने मुशरिकीन को सुना, वो अबू जहल के बारे में जो घने दरख्तों जैसी नेजों और तलवारों की बाढ़ में था कह रहे थे, अबुल हुकम तक किसी की रसाई न हो। मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जब मैंने ये बात सुनी तो उसे अपने निशाने पर ले लिया और उसकी सिमत जमा रहा। जब गुंजाइश मिली तो मैंने हमला कर दिया और ऐसी ज़र्ब लगाई कि उसका पांव निस्फ पिंडली से उड़ गया। वल्लाह जिस वक्त ये पांव उड़ा है तो मैं उसकी तशबीह सिर्फ उस गुटली से दे सकता हूँ जो मौसल के मार पड़ने से झटक कर उड़ जाए। उनका बयान है कि इधर मैंने अबू जहल को मारा और उधर उसके बेटे अकरमा ने मेरे कंधे पर तलवार चलाई जिससे मेरा हाथ कट कर मेरे बाजू के चमड़े से लटक गया और लड़ाई में मखल होने लगा। मैंने उसे अपने साथ घसीटते हुए सारा दिन लड़ा, लेकिन जब वो मुझे अजियत पहुंचाने लगा तो मैंने उस पर अपना पांव रखा और उसे जोर से खींच कर अलग कर दिया। उसके बाद अबू जहल के पास मुआज़ बिन अफरा पहुंचे, वो जख्मी था। उन्होंने उसे ऐसी ज़र्ब लगाई कि वो वहीं ढेर हो गया, सिर्फ सांस आती जाती रही। उसके बाद मुआज़ बिन अफरा खुद भी लड़ते हुए शहीद हो गए। जब मारका खत्म हो गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो देखे कि अबू जहल का अंजाम क्या हुआ? उस पर सहाबाए कराम रजी अल्लाह तआला अन्हु उसकी तलाश में बिखर गए। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे इसी हालत में पाया कि अभी सांस आ जा रही थी। उन्होंने उसकी गर्दन पर पांव रखा और सर काटने के लिए दाढ़ी पकड़ी और फरमाया, ओ अल्लाह के दुश्मन, आखिर अल्लाह ने तुझे रुस्वा किया ना? उसने कहा, मुझे काहे का रुस्वा किया? क्या जिस शख्स को तुम लोगों ने कत्ल किया है उसे भी बुलंद पाया कोई आदमी है, या जिसको तुम लोगों ने कत्ल किया है उसके भी ऊपर कोई आदमी है? फिर बोला, काश मुझे किसानों के बजाय किसी और ने कत्ल किया होता। उसके बाद कहने लगा, मुझे बताओ आज फतह किसकी हुई? हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल की। उसके बाद हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद से जो उसकी गर्दन पर पांव रख चुके थे कहने लगा, ओ बकरी के चरवाहे, तू बड़ी ऊंची और मुश्किल जगह पर चढ़ गया। वाज़े रहे कि अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु मक्के में बकरियां चराया करते थे। इस गुफ्तगू के बाद हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसका सर काट लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाकर हाजिर करते हुए अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, ये रहा अल्लाह के दुश्मन अबू जहल का सर। आपने तीन बार फरमाया, वाकई उस खुदा की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। उसके बाद फरमाया, अल्लाह हु अकबर, तमाम हम्द اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہ کو شکست دی، پھر فرمایا چلو مجھے اس کی لاش دکھاؤ۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جا کر لاش دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون ہے۔ سامعین، وقت کی کمی کے باعث ہم اپنے اس سلسلے کو یہیں پر اختتام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی نشست میں۔ اس کے ساتھ ہی قاسم بھٹی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔
0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP
3: Listen Learn, discover. With radio station FM 92.6, UCP ke dunya.

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में वो सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: इस हुनर कदा में हम सदाकार बनाते हैं। चलना तो सबको आता है, हम उड़ना सिखाते हैं। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: number one radio station, FM 92.6, UCP ki duniya. UCP ki duniya.
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان یو سی پی
3: ایک نیا انداز
4: ایک نئی سوچ
3: एक नई पहचान
4: एक नई लगन
3: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान
4: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से
3: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की मालूमात की और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की
4: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन
3: जब मिलती है लगन
4: मेहनत
3: कामयाबी और खुलूस
4: तो बनती है
3: यूसीपी की दुनिया
4: आप सुन रहे हैं एफएम 92.6
3: सुनते रहिए
5: السلام علیکم سامعین میں ہوں آپ کا میزبان شازیب مرزا اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا فیکلٹی آر میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید آج کے خصوصی پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فیکلٹی آف انجینئرنگ سے ڈاکٹر محمد کامران سلیم السلام علیکم سر
6: وعلیکم السلام
5: سر کیسے ہیں آپ
6: الحمدللہ
5: سر بہت شکریہ آپ کا آپ نے اپنے ہمارے لیے وقت نکالا میں اپنے سامعین کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر کامران ایسوسیٹ پروفیسر ہیں فیکلٹی آف انجینئرنگ میں ساتھ ہی ساتھ فاؤنڈر ہیں یو سی پی اسپیس ریسرچ سینٹر کے ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اپنے بارے میں ہمارے سامعین کو بتائیے گا کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں
6: جی بالکل شاہزیب میں نے اپنی انڈر گریجویٹ کی تھی الیکٹریکل انجینئرنگ میں 2004 میں اس کے بعد میں ایم ایس سی کے لیے چلا گیا تھا سویڈن میں جہاں پر میں نے ایم ایس سی الیکٹریکل انجینئرنگ کی ساتھ میں میں نے ایک سال یورپین اسپیس ایجنسی میں جرمنی میں کام کیا جہاں پہ میرا فوکس تھا فارمیشن فلائنگ مشنز کے اوپر اور اس کے بعد میں نے واپس آ کے پاکستان میں 2007 میں اسپارکو کو جوائن کیا جو ہمارا نیشنل اسپیس سینٹر ہے اور وہاں پہ میں نے 2011 تک سرو کیا اور ڈفرینٹ سیٹلائٹ پروٹوٹائپنگ کے اوپر کام کیا جو پاکستان کے 103 پروجیکٹس پہ کام کر رہا تھا وہاں پر میں نے اپنی فیڈ بیک دی اس کے بعد اسی دوران مجھے ایم پی ایچ ڈی کا اسکالرشپ ملا کنگ ساؤتھ یونیورسٹی سے اور اس کے لیے میں نے پرسیو کیا اور 2016 میں مجھے پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی تھی کنگ ساؤتھ یونیورسٹی میں اور میرا کام تھا ریڈارس کے اوپر فارمیشن فلائنگ کے اوپر اور ڈفرنٹ اینٹیناز کے اوپر جو کہ آپ ریڈارس میں اور اٹانومس ویکلس کے اندر یوز کر لیتے ہیں وہاں پر یوز کر سکتے ہیں واپس آ کے میں نے 2017 میں یو سی پی کو جوائن کیا ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر اور آہستہ آہستہ میرا اسپیس میں انٹرسٹ تھا اسپیس ٹیکنالوجی کے ساتھ انٹرسٹ تھا تو میں نے پھر آہستہ آہستہ اپنی لیب ایک ڈیولپ کرنا شروع کی کہ یہاں پر ہم اسپیس ٹیک کے اوپر کام کر سکیں اور کسی طریقے سے میں پھر اسپیس ٹیکنالوجی کی لیب کو اسٹیم ایجوکیشن سے لنک کر لوں کہ جہاں پر ہم سائنس ٹیکنالوجی انجینئرنگ اور میتھمیٹکس کو فروغ دے سکیں پاکستان کے اندر اور 2020 میں مجھے ایسوسیٹ پروفیسر کی پروموشن ملی اینڈ میں نے پھر اس کے بعد ڈفرینٹ جگہوں پہ اپلائی کرتا رہا ریسرچ فنڈنگس کے لیے پروجیکٹس کے لیے پرپوزلس کے لیے اور اس دوران مجھے کیا کہتے ہیں منسٹر آف پلاننگ کی طرف سے رسپانس ملا اسپارکو جو ہمارا نیشنل اسپیس ایجنسی ہے وہاں سے مجھے رسپانس بڑا اچھا ملا ہے اور ہمیں کچھ فنڈنگ بھی ہم لے آئے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ میں جس کے لیے ہم نے شکر گزار ہیں کہ گورنمنٹ نے ہمیں اس کے لیے ایلیجیبل کیا تو اس وقت میں الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں ہوں فیکلٹی آف انجینئرنگ میں ہوں ایسوسیٹ پروفیسر کی پوزیشن میں ہوں اور آلسو فاؤنڈر ہوں اسپیس ریسرچ سینٹر کا جو ہم نے یو سی پی میں ڈیولپ کیا
5: سر یہ جو اسپیس ریسرچ سینٹر ڈیولپ ہوا ہے ظاہر سی بات ہے ایک ریسرچ سینٹر کو ڈیولپ کرتے ہوئے اچانک تو یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں ظاہر سی بات ہے ٹیکس ایئرز آف ہارڈ ورک اینڈ ڈیڈیکیشن جو سیٹ اپ ہوا ہے سارا اینڈ یو آر دا فاؤنڈر آف اٹ سر اس کا تھوڑا بتائیں کہ اس کا ویژن اور مشن کیا ہے اس ریسرچ سینٹر کا
6: تو بیسیکلی اس کا جو ویژن مشن ہم نے سب سے پہلے جو ہمارا مشن ہے وہ یہ ہے کہ بائی ایئر 2030 ہم نے یونیورسٹی میڈ سیٹلائٹ کو لانچ کرنا ہے ये मेन मिशन है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अब इसके अलावा इसके हमने छोटे छोटे और हमने मिशन रखे हुए हैं जिसमें हमारा आ जाता है कि स्टेम एजुकेशन को इंजीनियरिंग के साथ कैसे हमने इंटीग्रेट करना है, क्योंकि अब चीज़ इंजीनियरिंग जो है हमारी काफ़ी एडवांस हो चुकी हुई है और ऑन हैंड्स के ऊपर हम चले गए हुए हैं कि बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया जाए, ऑन हैंड ट्रेनिंग्स दी जाए, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटेशन के साथ उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जाए। तो बेसिकली यहाँ पर हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को, डिफरेंट सिस्टम्स को डिज़ाइन करते हैं और जिनको फर्दर यूटिलाइज करते हैं हम अपने इंजीनियरिंग करिकुलम के अंदर। तो ये हमारा मिशन।
5: अच्छा अच्छा, तो डॉक्टर साहब एक आम लिस्टनर के लिए, जैसे आपको तो ज़्यादा इन चीज़ों का पता है, तो मेरे जैसे एक आम लिस्टनर के लिए अक्सर एक कैन सेट की एक टर्म यूज होती है इंजीनियरिंग के अंदर, एक आम लिस्टनर, एक आम शख्स की जुबान में आप कैन सेट को किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हो?
6: बेसिकली कैन सेट जो है ये एक स्टूडेंट सेटेलाइट है। अब एक रियल सेटेलाइट अगर हमने बनाना होगा तो रियल सेटेलाइट की कॉस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स में हो सकती है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि उसने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हम क्या करते हैं कि बच्चों को स्टार्ट करने के लिए एक कैन सेट डेवलप करते हैं। वो कैन सेट क्या होता है, जो सोडा कैन आपका होता है, पेप्सी का कैन है, कोका कोला का कैन है, वो साइज होता है, और उसके अंदर आप एक जो बेसिक सैटेलाइट के जितने भी सब सिस्टम्स होते हैं, कम्युनिकेशन कैसे हो रही है, कैमरा मॉड्यूल लगा हुआ है, डिफरेंट सेंसर्स लगे हुए हैं, वो तमाम सेंसर्स वगैरह उसके अंदर लगे होंगे, और वो सारे आप फिर ग्राउंड स्टेशन एक छोटा सा बिल्ड करते हैं लैपटॉप पे और उसको एंटीना के साथ आप कम्युनिकेट करवाते हैं, और सारा काम जो एक सेटेलाइट से आप लॉन्ग डिस्टेंस पे कर रहे होते हैं आप एक लैब एनवायरमेंट के अंदर बैठ के कैन सेट के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो इसमें एक स्टूडेंट जो है वो एक पूरे प्रोसेस से गुजर जाता है कि उसको सेटेलाइट के बेसिक सब सिस्टम्स के बारे में एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप,
5: यानी वो एक रॉकेट का प्रोटोटाइप कोई चीज,
6: सेटेलाइट
5: का प्रोटोटाइप,
6: बिल्कुल सेटेलाइट का स्टूडेंट प्रोटोटाइप बना लेते हैं और उसको फिर वो आस्ता आस्ता फिर एडवांस करते रहते हैं। और ये काम हम अपनी लैब में भी करते हैं और बेशुमार किस्म की हमने सेटेलाइट डेवलप किए हुए डिफरेंट पेलोड्स के साथ, डिफरेंट मिशन के साथ, डिफरेंट सेंसर्स उसमें लगा के बच्चों को हम फिर सिखाते हैं और फिर वो चीज को आगे यूटिलाइज करते हैं।
5: तो डॉक्टर साहब जब भी एक स्पेस रिसर्च सेंटर की बात होती है, स्पेस की बात होती है, तो सबसे पहले इंसान के जहन में आती है रॉकेट, एक स्पेसशिप, दूसरे सयारों पे जाना, ठीक है। तो इसके अंदर देखा जाए तो, लेकिन जब देखा जाए तो स्पेस या रिसर्च इससे बहुत ज्यादा वसी है, बहुत वास्ट इसकी रिसर्च है, लेकिन देखा जाए तो बेसिक कॉन्सेप्ट भी जो रॉकेटरी का वो भी नहीं पता लोगों को। तो थोड़ा बताइएगा हमारे आम लिसनर्स के लिए कि रॉकेटरी असल में है क्या।
6: बिल्कुल सर, तो बेसिकली जो है रॉकेटरी जो है वो हमें रिक्वायर्ड होती है स्पेस को एक्सेस करने के लिए। तो इसके ऊपर भी हम यहाँ पर थोड़ा बहुत काम करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स काम करते हैं। अब बेसिकली जो कैन सेट का एक्सपेरिमेंट का जिक्र हो रहा था, तो वो कैन सेट का एक्सपेरिमेंट इंटरनेशनल लेवल पे इसी तरह ही वो परफॉर्म करते हैं कि आप वो स्टूडेंट सेटेलाइट जो होता है उसको आप एक रॉकेट के अंदर इंसर्ट करते हैं, और यूजुअली वो उसको हम मॉडल रॉकेट बोलते हैं, और उसको डिजाइन किया जाता है 1 किलोमीटर के एल्टीट्यूड को अचीव करने के लिए। यानी कि बेसिकली आप अपने कैन सेट को या जो स्टूडेंट सेटेलाइट आपने बनाया होता है उसको उस रॉकेट के अंदर डालते हैं, वो रॉकेट जो है लॉन्च किया जाता है, वो 1 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे जाता है, और वहां से वो आपके कैन सेट को जो स्टूडेंट सैटेलाइट आपने बनाया हुआ उसको वो डिप्लॉय करता है। अब पैराशूट के साथ फिर वो आपका कैन सेट भी नीचे आ जाता है और रॉकेट भी जमीन पे आ जाता है। ये दोनों चीजें रीयूजेबल होती हैं।
5: अच्छा अच्छा,
6: दोनों चीजें रीयूजेबल होती हैं, और आपके ड्यूरिंग दिस फ्लाइट में आप क्या करते हैं, एक स्टूडेंट के साथ जो एक्सपेरिमेंट में जो सीखता है वो ये सीखता है कि आपने एक सैटेलाइट को लॉन्च करना है तो लॉन्चिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, वाइब्रेशन है, शॉक है, डिफरेंट चीजें हैं जिसको वो हैंडल कैसे करेगा, और इसी तरह सैटेलाइट लैंड हो रहा है, फर्ज करें वो चांद पे लैंड हो रहा है या मार्स में लैंड हो रहा है या इवन अर्थ पे दोबारा लैंड हो रहा है, तो उस लैंडिंग के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और कैसे आप उसको ग्राउंड स्टेशन के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो ड्यूरिंग दिस कैन सेट ऑपरेशन या एक्सपेरिमेंट आप इन तमाम प्रोसेस से एक स्टूडेंट को गुजारते हैं, जो कि बहुत यूजफुल होता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए।
5: अच्छा अच्छा, तो डॉक्टर साहब हमने फिलहाल आपने सारी रिसर्च सेंटर, विजन, मिशन, कैन सेट, रॉकेटरी के बारे में जाना है। अभी बहुत सी बातें जो आपसे मजीद करनी है, आपका वक्त में मजीद चाहिए होगा, लेकिन उससे पहले हम एक लेंगे छोटा सा ब्रेक। सामने हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा, इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।

0: 92.6 बोरियत को भगा दो।
1: एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद कामरान सलीम, UCP स्पेस रिसर्च सेंटर के फाउंडर। डॉक्टर साहब, जैसे आपने सारा अभी हम लोगों ने बात की थी कि जो हमारा सारा विजन सेट है, हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो डॉक्टर साहब देखा जाए तो कोई अब जो हमारे एक स्टूडेंट है, अब हर चीज़ ऑन फील्ड जाने से पहले कुछ ना कुछ हमें नॉलेज वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, वर्किंग की ज़रूरत पड़ती है, कोई इस टाइम कोई स्पेस टेक्नोलॉजी कोई कोर्स वगैरह इस टाइम कोई डेवलप है इस टाइम UCP के अंदर?
2: बिल्कुल, हम पिछले 2 साल से कोशिश कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट सेमेस्टर में हमने कोर्स ऑफर किया था स्पेस टेक के नाम से, स्पेस टेक्नोलॉजी के नाम से। और ये मेरे ख्याल है ये कोर्स पाकिस्तान में पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस कराया गया है
1: स्पेस टेक
2: का यूनिवर्सिटीज में।
1: मज़ीद बताइएगा क्या
2: इस कोर्स में बेसिकली क्या करते हैं, स्टूडेंट को A to Z शुरू से लेके बिल्ड करता है वो अपना पूरे का पूरा सेटेलाइट, स्टूडेंट सेटेलाइट जो कैंसेट की मैंने बात की। फर्दर मोर वो उसमें डिज़ाइन करते हैं डिफरेंट एंटेनास, उसके कम्युनिकेशन को एनहेंस करते हैं और फिर आप स्पेस से डाटा को रिसीव करके उसको प्रोसेस करते हैं कि जैसा कि आपको मैंने बताया कि हमने इमेज कैप्चर किया और उसको हमने यूटिलाइज किया। तो इस कोर्स के अंदर आप देखेंगे स्पेस टेक का जो कोर्स है इसके अंदर 3 hours a week हम इसको हैंडल करते हैं यूनिवर्सिटी में, और 3 credit hours का कोर्स है और इसमें सेटेलाइट सब सिस्टम, सेटेलाइट कम्युनिकेशन, सेटेलाइट ऑर्बिट्स, लिंक बजट्स, एटीट्यूड कंट्रोल, इवन PCB डिजाइनिंग, PCB मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिकल डिज़ाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इमेज प्रोसेसिंग, एंटीना डिज़ाइन, सेटेलाइट ग्राउंड स्टेशन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन, इन तमाम चीज़ों को टच किया जाता है।
1: 3 घंटे एक हफ्ते, तो टोटल कितने?
2: टोटल हमारे पास 16 weeks होते हैं।
1: 16 weeks,
2: तो और उसके एंड पे हमारा एग्जीबिशन हुआ था जिसके अंदर हम सारे स्टूडेंट्स अपना ये कैंसेट का एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करते हैं, तो इट इज़ अ वेरी हिट इन UCP एटलीस्ट। और इससे पहले
1: 48 hours का एक पूरा कोर्स है।
2: हाँ जी, तो ये इसके अंदर आप जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को जो टच करते हैं उसमें EZEDA, कैडेंस, GNU रेडियो, CST, आपके पास NSYS, HFSS होता है, सॉलिड वर्क्स होता है जो मैकेनिकल डिज़ाइन के लिए यूज़ करते हैं, MATLAB कोडिंग के लिए यूज़ करते हैं, रिपोर्ट राइटिंग के लिए लेटेक्स को हम यूटिलाइज कराते हैं। तो इट इज़ वेरी मच हैंड्स ऑन कोर्स और स्टेम बेस्ड कोर्स है।
1: अच्छा,
2: और इसको इंशाल्लाह ताला हम अभी फ्यूचर में एक्सटेंड करना चाह रहे हैं कि FOIT और FOST यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स भी इस कोर्स में आएं और पढ़ें। और सबसे मजे की बात यह है कि इस कोर्स के लिए कोई प्रीरिक्विजिट रिक्वायर्ड नहीं है। एनीवन हु हैज बेसिक नॉलेज ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ही कैन जॉइन अस, और वो आगे अपना उसको आगे हम खुद लेकर चलेंगे, इसको ऐसे डिजाइन किया।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, तो डॉक्टर साहब आप बीच में काफी दफा स्पार्को का जिक्र आया, यानी एक इंडस्ट्री लिंक्ड इंडस्ट्री के साथ आपने अपने स्टूडेंट्स को लिंक किया हुआ है फील्ड वर्क के लिए, इसके अलावा कोई कोलैबोरेशन और लिंकेजेस अवेलेबल हैं UCP के या बाहर के स्टूडेंट्स के लिए जो कि वो फील्ड में जाकर काम कर सकें? इसी
2: बिल्कुल, हमारी जो कोलैबोरेशन है इस वक्त हमारे पास इंटरनेशनल और नेशनल लेवल दोनों लेवल्स पे हमारी बड़ी अच्छी कोलैबोरेशन डेवलप हो चुकी हुई है। इंटरनेशनल लेवल पे हम इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ विस्बर के साथ इन कॉन्टैक्ट हैं, मोरक्को में हम असिस्को के साथ इन कॉन्टैक्ट हैं, जापान में हमारे पास डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं जिनके साथ हमारा इनिशियल लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं, और तुर्की में हम लोगों के साथ इन कॉन्टैक्ट हैं। उसके अलावा इस सर्कल को हमने एक्सटेंड किया हुआ है नेशनल लेवल पे भी, और नेशनल लेवल पे हमने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में कॉन्टैक्ट किया डिफरेंट प्रोफेसर्स को, और उन्होंने काफ़ी इसको इस चीज़ को अप्रिशिएट किया और अब वो भी हमारे साथ मिल रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास स्लम्स में डॉक्टर सबी अनवर साहब हैं, उन्होंने हमारी काफ़ी सपोर्ट किया कि जो चीज़ें हमारे पास UCP में अवेलेबल नहीं है तो वो हमें वहाँ पर अलाउ करते हैं और हम जाके लम्स के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं और अपने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी वहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह डॉक्टर हदीद हैं गुलाम इसा खान में, उनके साथ हम इन कॉन्टैक्ट हैं। सजादुर रहमान साहब हैं हमारे पास नमल यूनिवर्सिटी मियांवाली में, हमारे पास अवैस अहमद खान साहब हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में UET लाहौर में, और इन्होंने फ्लोट सेट की जो हमने मेड इन पाकिस्तान मॉडल बनाया काफ़ी हमारी सपोर्ट की, इनकी हेल्प की वजह से हमने उसको दिया। डॉक्टर अब्दुल अजीज़ हैं हमारे पास इस्लामिया यूनिवर्सिटी बावलपुर से, और डॉक्टर वकार हैं जो इस वक्त NESTAP में है, नेशनल एरोस्पेस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क में।
1: अच्छा,
2: तो हम इस नेटवर्क को भी आसस्ता ग्रो कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में लेके हम इसको काफ़ी आगे तक
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो सामीन, जैसा कि डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, मैं यकीन करें मैं आपको पहले भी बताया, मैं फिर कहूँगा कि मुझे इस चीज़ के अंदर ना बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आपकी बातें सुन के मैं इतना को मोटिवेट हुआ हूँ इस टाइम कि मैं खुद भी चाहता हूँ कि मैं देखूँ।
2: बिल्कुल,
1: मैं अभी आगे से जरूर स्पेस रिसर्च सेंटर भी चक्कर लगाऊंगा। और हमारे सामईन, मैंने तो बहुत सीखा और हमारे सामईन भी यकीन है जो सुन रहे थे, ये कैसा एक ऐसी फील्ड है, ये बड़ी नैरो डाउन है और बहुत कम लोग हैं लेकिन जो है वो बहुत इंटरेस्टेड है। और यकीन वो जैसे मैं खुद भी बहुत खुश हुआ और बहुत मोटिवेट हुआ, हमारे सामईन भी मोटिवेट हुए होंगे। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ एक वक्त था जो हमारा इख्तिताम को आया। मुझे डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, हमारी पहली मुलाकात थी और इंशाल्लाह ताला हम मजीद शोज भी करेंगे इसके ऊपर। सामईन, हमारे साथ मुझे डॉक्टर मोहम्मद कामरान सलीम साहब, फाउंडर ऑफ यूसीपी स्पेस रिसर्च सेंटर, और आप सुन रहे थे फैकल्टी और FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते इसी तरह किसी बहुत ही अच्छे टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
2: अल्लाह हाफिज़।

0: ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया।
1: वेलकम बैक सामेन, आप सुन रहे हैं एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। और हम बात कर रहे थे इससे पहले हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट का किरदार। मेरा ताल्लुक एफओपीएस से है, फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस। जिन लोगों ने अभी ट्यून किया है उनकी जानकारी के लिए आपको बताता चलूं कि हमारे साथ हैं डॉक्टर रहमतुल्ला असद, जो एवरकेयर हॉस्पिटल में एज ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब वेलकम बैक। हम आपसे पहले सवाल कर रहे थे प्रेपरेशन ऑफ द डोज के बारे में कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट

0: करना कि डॉक्टर ने एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी है, हमने उसकी डोज देखनी है। हम उसके लिए क्या करते हैं, हम देखते हैं कि मरीज का एज क्या है, मरीज का वेट कितना है, उसको उस दवाई की ज़रूरत है कि नहीं। फिर हम उसकी लैब वैल्यूज़ देखते हैं, उसके जिगर का फंक्शन, उसके गुर्दों का फंक्शन, उसका ब्लड वर्क सारा, वो हम सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम उसकी डोज कैलकुलेट करते हैं और बताते हैं कि ये डोज़ इतनी ठीक है कि नहीं है। अगर चेंज करना है तो हम डॉक्टर से फिर जाके बात करते हैं और उसको चेंज करवाते हैं और करेक्ट डोज ही डिस्पेंस करवाते हैं हमेशा।
1: अच्छा, ज़्यादातर ओल्ड एज के पेशेंट्स होते हैं जिसमें रीनल इम्पेयरमेंट के चांसेस भी होते हैं, जिसमें हम गुर्दे की खराबी की बात करते हैं या लीवर के खराबी की बात करते हैं, तो उसमें भी उसमें फार्मासिस्ट डोज किस तरह से तैयार करता है, उसमें क्या उसको
0: सर मैं बताता हूँ आपको। इसमें जो होते हैं ना ओल्ड पेशेंट्स, उनके अंदर ज़्यादा मसला होता है रीनल यानी कि गुर्दों का या जिगर का, तो उसके लिए लैब वैल्यूज होती हैं। आपने अगर कोई आपके घर में किसी ने इनका भी लैब टेस्ट कराया होगा, RFTs और LFTs, रीनल फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, हम वो देखते हैं। उनके अंदर लैब्स को देखते हुए हम वेट बेस्ड डोजिंग करते हैं पेशेंट की। पहले वेट बेस्ड होती है, लाइक आप सपोज एक एंटीबायोटिक है वैंकोमाइसिन, ठीक है, उसकी डोज जाती है 15-20 mg/kg। अब ये है नॉर्मल पेशेंट के अंदर जिसमें उसका किडनी ठीक काम कर रही है। एक पेशेंट है जिसकी किडनी कॉम्प्रोमाइज है, अब उसमें क्या होता है, डोजिंग हम उस तक करेंगे जैसे 10-15 mg/kg, लेकिन उसको हम पेरेंट पे रिड्यूस कर देंगे उसके किडनी फंक्शन को मद्देनजर रखते हुए। पहले ही पेशेंट को जा रही थी दिन में 3 बार, किडनी फंक्शन को देखते हुए हमने उसको दिन में 1 बार कर दिया, दिन में 2 बार कर दिया।
1: ओके,
0: तो इस तरह हम उसको डोज रिडक्शन कहते हैं।
1: ओके, वो
0: हम
1: कर देते हैं ताकि लिवर के ऊपर या किडनी के ऊपर लोड कम पड़े।
0: बिल्कुल। और इसी तरह सर मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर भी डोजिंग का बहुत ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि उनके बॉडी अभी डेवलप हो रही होती है, फंक्शंस प्रॉपर नहीं होते, जिगर के गुर्दे बन रहे होते हैं अभी, मतलब फंक्शन अपना डेवलप कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर भी डोजिंग जो होती है ना वो हम डिफरेंट रखते हैं। जैसे मैं आपको इसमें भी अगर एग्जांपल दूं, बड़ों के अंदर पैरासिटामोल हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं यहाँ पे।
1: सही।
0: पैरासिटामोल हम बड़ों में देते हैं 2 गोलियां सुबह दोपहर शाम।
1: ओके।
0: लेकिन बच्चों में ऐसे नहीं दे सकते हम।
1: सही।
0: बच्चों की डोज जाती है 10-15 mg/kg पर डोज, ठीक है। छोटे बच्चों में इस तरह होती है डोजिंग वेट बेस्ड, कि कितने किलो का बच्चा है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर वो डोज बन जाती है उसकी।
1: ओके ओके ओके, डॉक्टर साहब ये तो हमें समझ आ गई बड़ी अच्छे तरीके से। मुझे बताइएगा कि क्या हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का इमरजेंसी में कोई रोल है?
0: जी सर बिल्कुल, इमरजेंसी में भी रोल होता है। हमारा काम होता है कि मेडिसिन की अवेलेबिलिटी को मेक श्योर करना, और स्पेशली इन द केस ऑफ इमरजेंसी जैसे कार्डिक इमरजेंसी हो गई है या पॉइजन इमरजेंसी हो गई है, तो हमारा काम होता है कि हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल हो और हम बताएं कि इसकी करेक्ट डोज क्या होगी इस इमरजेंसी के अंदर और किस चीज़ में डाइल्यूट करके देना है हमने। और अगर कोई पॉइजन वाला केस आता है हमारे पास तो हमने उनको ये बताना होता है कि इसकी एंटीडोट क्या होगी, हमारे पास होनी चाहिए वो अवेलेबल ऑल द टाइम। तो ऐसे रोल्स होते हैं इमरजेंसी के अंदर फार्मासिस्ट के।
1: अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब ये बताएं कि क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं डॉक्टर साहब के, उसमें दवाइयों के मुज़र असरात जिसको हम कहते हैं आम अल्फाज में हम कहते हैं दवाइयों के मुज़र असरात में फार्मासिस्ट का क्या रोल है, क्या वो मुज़र असरात जिनसे हैं जो दवाई के ओर होते हैं क्या उसके ऊपर नज़र भी रखता है और वो पेशेंट को आगे फर्दर इन्फॉर्म भी करता है कि आप जो मेडिकेशन इस वक्त ले रहे हैं तो उनसे आपको ये एडवर्स इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो उसके ऊपर फार्मासिस्ट का क्या रोल है, क्या मुझे आप 1-2 एग्जांपल्स के साथ समझाएंगे ताकि हमारे जो सामीन हैं उनको समझ आ सके कि फार्मासिस्ट से रابطہ करना आफ्टर द प्रिस्क्रिप्शन कितना ज़रूरी है, कि डॉक्टर्स ने जो प्रिस्क्रिप्शन लिख दी है वो फार्मासिस्ट उसको किस तरह से समझा सकता है।
0: जी सर बिल्कुल, हम जैसे कि मैंने बताया कि फार्मासिस्ट एक मेडिसिन एक्सपर्ट होता है, तो मेडिसिन से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करना उसका काम है और ये हम करते भी हैं। और जैसे आपने बताया कि आप पूछ रहे थे कि मुज़र असरात पे हम बात कर रहे थे, कि मुज़र असरात जो है सर वो हम पेशेंट को मशवरा देते हैं और एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि ये साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं और आपने उसके ये प्रिकॉशन करने। और जैसे अगर मैं बताऊँ आपको, एक ड्रग है एंटीबायोटिक, उससे पेशेंट को एलर्जी फर्स्ट टाइम लगा है उसको और उसको रैश हो गया स्किन पे, बुखार हो गया, एलर्जी के सिम्टम्स आ गए हैं, तो ये उसका एक मुज़र असर है उसका। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम फौरन एंटीबायोटिक स्टॉप करेंगे, उसको उसकी एलर्जी के लिए कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, एंटीहिस्टामिन टाइप, या स्टेरॉइड देंगे और हम एंटीबायोटिक

0: अपने क्लास ही चेंज कर देंगे, फार्मासिस्ट एक न्यू सजेशन देगा डॉक्टर को।
1: सही।
0: सेकेंडली अगर आप एक और एग्जाम्पल मैं दूं आपको, ब्लड पतला करने की एक दवाई होती है उसे हम हेपरिन कहते हैं,
1: सही,
0: अक्सर हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं डीबीटी प्रोफाइलैक्सिस के लिए और पी प्रोफाइलैक्सिस के लिए। तो उससे क्या होता है, खून पतला होता है, लेकिन उसका एडवर्स इफेक्ट क्या होगा कि खून बहुत ज्यादा पतला हो गया।
1: सही।
0: ठीक है, वो क्या करता है आपके प्लेटलेट्स को कम कर देता है, और प्लेटलेट इतने कम हो जाते हैं कि वो आपके ब्लीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, फार्मासिस्ट उसको होल्ड करवा देगा, डॉक्टर को बताएगा कि डॉक्टर साहब इसका ये साइड इफेक्ट नोन एडवर्स इफेक्ट है और पेशेंट सारे सिम्टम्स शो कर रहे हैं, इसको होल्ड कर दें। तो फिर वो उसको होल्ड कर देते हैं अंटिल पेशेंट नॉर्मल रिकवर नहीं हो जाता।
1: ओके, इट मींस के डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को एस्टेब्लिश करने में फार्मासिस्ट का बड़ा अच्छा रोल है।
0: जी सर।
1: ओके, कोई शुगर के मरीजों के लिए कोई एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि जिसमें फार्मासिस्ट का कोई रोल हो उसको एडवर्स इफेक्ट बताने में, लाइक इंसुलिन के हवाले से?
0: सर, इंसुलिन के हम उनको बताते हैं कि यूज़ किस तरह करना है, क्योंकि डॉक्टर इंसुलिन लिख तो देता है लेकिन वो ये नहीं बताता कि ये इस्तेमाल कैसे करनी है, इसको रखना कहाँ पे है, इसके प्रिकॉशंस क्या हैं, स्टोरेज कंडीशंस क्या हैं। अब मरीज़ आता है हमारे पास, हम उसको बताते हैं कि आपने किस किस हिस्से पे जिल्द में कैसे टीका लगाना है। फिर लोगों को ये नहीं पता होता कि इंसुलिन से यूनिट किस तरह निकालने हैं, कितने यूनिट निकालने हैं, मैं अगर इंसुलिन सिरिंज में इंसुलिन डाल रहा हूँ तो कितने यूनिट डल रही है। तो हम सारा कुछ लोगों को बताते हैं। और इंसुलिन एक ऐसा ड्रग है कि अगर आप इसको एरर में इस्तेमाल कर, लाइक जितना डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया उससे ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से, जो कि एक बहुत सिवियर कंडीशन है जिसमें आपके ब्लड का शुगर बहुत ही कम हो जाता है।
1: बहुत खूब डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि जिस तरह से मैं दूसरी अमराज के बारे में पूछ रहा हूँ, तो कैंसर का मर्ज़ आपको पता है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा फैल रहा है और इसकी रिपोर्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो क्या कैंसर के इलाज में फार्मासिस्ट का कोई रोल है, कोई किरदार है?
0: जी सर बिल्कुल। कैंसर का इलाज सर इस तरह होता है कि एक पेशेंट को कैंसर डायग्नोज हो गया, अब इंटरनेशनली कुछ गाइडलाइंस बनी हुई हैं जो हमने फॉलो करनी होती है कैंसर ट्रीटमेंट की, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है या बोन मैरो का कैंसर होता है, तो उसके अंदर प्रोटोकॉल्स होते हैं, लीन प्रोटोकॉल, बीम प्रोटोकॉल, हर प्रोटोकॉल के अंदर एक सेट ऑफ एंटी कैंसर मेडिसिन होती हैं। ठीक है, तो फार्मासिस्ट क्या करता है, फार्मासिस्ट काम होता है सबसे पहले वेरिफिकेशन, जहाँ दवाई होगी वहाँ फार्मासिस्ट ने वेरीफाई करना है कि क्या ये दवाई ठीक है, क्या ये दवाई सही डोज है और इस पेशेंट को जानी चाहिए। तो वो सब हम देखते हुए हम उसकी वेरिफिकेशन करते हैं, डोज एडजस्टमेंट करते हैं, फिर उसकी प्रिपरेशन करते हैं और मॉनिटरिंग में किरदार अदा करते हैं।
1: ओके डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अभी तक बहुत अच्छी हमें मालूमात फराहम कर रहे हैं। और अभी हम मिलते हैं छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is 92.6.
1: ویلکم بیک سامعین، آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 جو سی بی کی دنیا، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے رول آف فارماسسٹ ان دی ہاسپٹل. اینڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رحمت اللہ اسد، جو کلینیکل فارماسسٹ ہیں ایور کیئر ہاسپٹل میں. ویلکم بیک ڈاکٹر صاحب.
2: تھینک یو سر. ویلکم.
1: آپ کے ساتھ بڑی سحر حاصل گفتگو ہو رہی ہے، تو آپ مجھے کائنڈلی یہ بتائیں کہ فارماسسٹ جنسا ہے وہ مریض کی میڈیکل ہسٹری یا میڈیسن ہسٹری دیکھتا ہے؟
2: جی سر، بالکل. فارماسسٹ کا ایک کلینیکل فارماسسٹ موسٹلی جو ہوتے ہیں وہ پیشنٹ کی پوری میڈیکل ہسٹری دیکھتے ہیں، پوری پریویس ہسٹری دیکھتے ہیں، کہ تاکہ ان کے ایک بگ پکچر مل جائے کہ پیشنٹ کو چل کیا رہا ہے، پیشنٹ کو ہوا کیا، اس کی پریویس میڈیسن کیا تھی، ہوم میڈیکیشن جو تھی، یا اگر وہ کہیں داخل ہوا تھا تو وہاں پہ کیا اس کو علاج ہو رہا تھا، پھر اس کی کرنٹ میڈیکیشن کیا چل رہی ہے، اس کی لیبس کیا ہیں، اور تاکہ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے وہ یہ دیکھے کہ کوئی اس کی چیز مس تو نہیں ہو رہی، کوئی انٹریکشن تو نہیں ہو رہا دو ڈرگس کا آپس میں، یا کوئی ایسی چیز جو اس نے ڈاکٹر کو چینج کروانی ہو یا ماڈیفائی کرنی ہو. اس میں سر میں ایک ایگزامپل کوٹ کروں گا. ہمارے ساتھ ریسنٹلی ایک کیس آیا تھا آئی سی یو کے اندر، ایک پیشنٹ تھا ایپیلیپسی کا.
1: اوکے.
2: ٹھیک ہے. اب ڈاکٹرز نے اس کی ہسٹری نوٹ کی، لیکن وہ یہ چیز اس سے پوچھنا بھول گئے کہ وہ اس کے لیے کیا میڈیسن لیتا تھا. لکھا ہوا تھا کہ ایپیلیپسی تھی، اور اس کے لیے ڈاکٹر نے کچھ میڈیسن نہیں ایڈ کی. اب یہاں پہ آتا ہے فارماسسٹ کا رول. میں جب بتا رہا ہوں آپ کو پیشنٹ ہسٹری کا، اب میں نے اس کی ہسٹری پڑھی کہ اس کو ایپیلیپسی تھی، میں نے اس کے کرنٹ میڈیکیشنز دیکھی کہ اس میں کوئی ایپیلیپسی کی دوائی ایڈ نہیں ہوئی ہوئی، پھر میں نے اس کی پریویس میڈیکیشن جو گھر کی اس کی ہوم میڈیکیشن تھی وہ اس کے اٹینڈنٹ سے پوچھی، سارا میں نے لنک کیا سب کچھ، تو پتہ لگا اس کو ایک ڈرگ ہے لیویٹرایسٹام، جو ہم ایپیلیپسی یعنی کہ مرغی کے لیے دیتے ہیں مریضوں کو،
1: بالکل
2: وہ اس کی مس ہوئی ہوئی تھی. تو وہ بھی میں نے ڈاکٹر کو بتایا، پھر ہم نے وہ ایڈ کی اور اس کی کنٹینیو کی ریگولر تھراپی، اور اگر یہ مس ہو جاتی تو کیا پتا اسے کیا کیا ہو سکتا تھا پیشنٹ کو. تو یہ ایک امپورٹنس ہے ہسٹری کی اور فارماسسٹ کی یہاں پہ.
1: اوکے. اٹ مینس کہ ڈاکٹر آف فارمیسی جنسا ہے، فارماسسٹ جنسا ہے ہاسپٹل میں، پیشنٹ کی ہسٹری لیے بغیر اس کا رول مکمل نہیں ہوتا.
2: جی سر.
1: ٹھیک ہے، آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا، مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کیا فارماسسٹ کے بغیر علاج کس طرح سے متاثر ہو سکتا ہے؟ ایک ایگزامپل تو آپ نے بتا دی کہ ہاسپٹل کے اندر جو ہے نا اس طرح سے متاثر ہوتا ہے، جیسے آپ نے اپیلپسی کی والی ایک ایگزامپل دی، تو اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں کہ اور کون کون سے چیزیں ہو سکتی ہیں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ فارماسسٹ کا بڑا اچھا رول ہو سکتا ہے، اور اگر نہ ہو تو اس کا علاج متاثر ہوگا.
2: اب سر دیکھیں، ایک فارماسسٹ جیسے کہ میڈیسن ایکسپرٹ، میں بار بار بتاتا ہوں، اگر ایک ایکسپرٹ نہیں ہوگا وہاں پہ تو میڈیسنس کا ایریشنل یوز ہوگا. لوگ دیکھیں گے نہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس کے سائڈ افیکٹس کیا ہوں گے، کیونکہ انہیں ایجوکیٹ کرنے والا کوئی بندہ نہیں ہوگا، فارماسسٹ نہیں ہوگا، پھر ایڈورس ریئیکشنز بڑھ جائیں گے، ایررز بڑھ جائیں گے، اور اس طرح جو کوالٹی آف پیشنٹ کیئر ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گی. اگر اس کے ہم ایگزامپل دیں تو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ ایک پیشنٹ ہے، وہ ایک میڈیسن سے الرجک سمپٹمز ایگزیبٹ کر رہا ہے.
1: اوکے.
2: اب ڈاکٹر کو یہ نہیں پتا کہ یہ الرجی یا سمپٹمز اس کو اس میڈیسن سے آ رہے ہیں، یہ بتانا تھا فارماسسٹ نے اس کو. اب ڈاکٹر اس انڈیکیشن کے لیے اس کو ایک نئی میڈیسن چلا رہا ہے، بجائے وہ پچھلی میڈیسن کو بند کرتا اور وہ سمپٹم خود ہی چلے جاتے، وہ اس کے لیے ایک اور میڈیسن چلا رہا ہے، اس سے کچھ ہوئے گا اس کے لیے ایک اور چلا دے گا، تو اس چکر میں پیشنٹ کی طبیعت مزید سے مزید خراب ہوتی جائے گی صحیح ہونے کی بجائے.
1: اوکے. اٹ مینس کہ ڈاکٹر اور فارماسسٹ کا کولیبوریشن جو سی ہے
2: بہت ضروری ہے،
1: فار دی پرسکرپشن از ویری امپورٹنٹ، یہ بہت ضروری ہے، تو اس کے بعد ہی مریض صحت یاب ہو سکتا ہے.
2: سر ناٹ جسٹ ڈاکٹر اور فارماسسٹ، ہمارے استاد ہمیں پڑھاتے تھے ٹرائی ایج، نرس، فارماسسٹ اور ڈاکٹر.
1: اوکے.
2: یہ تین ساتھ چلتے ہیں تو مریض کی کیئر جو ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے.
1: اوکے اوکے اوکے. بیکاز یہ تینوں ہیلتھ کیئر کے کسٹوڈینز ہیں.
2: بالکل سر، بالکل.
1: اوکے اوکے اوکے اوکے. ابھی ڈاکٹر صاحب ابھی یہ بتائیں کہ کیا کن کن مہارتوں کی ضرورت ہوتی ہے فارماسسٹ کے لیے، ہاسپٹل فارماسسٹ کے لیے پرٹیکولرلی، کیونکہ ہمارا فوکس زیادہ تر ہاسپٹل فارمیسی پہ ہی ہے، تو یہاں پر किन किन महारतों की जरूरत होती है?
2: सर सबसे पहले तो आपका सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा होना चाहिए, जैसे फार्माकोलॉजी है, अपने मेडिसिन है, क्योंकि हमारा काम ज्यादा मेडिसिन से होता है तो उसका नॉलेज जो है ना,
1: ऐसा तो नहीं है कि मेरा सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी है, आप मुझे सामने कह रहे हैं कि फार्माकोलॉजी बेहतर होना चाहिए?
2: नहीं सर, हमने आपसे पढ़ी है तो सर, लेकिन फार्माकोलॉजी एक बहुत की रोल प्ले करती है इसके अंदर। फिर उसके बाद आपको डोज कैलकुलेशन आनी चाहिए, कैलकुलेशन मैथ होता है वो आना चाहिए आपको कि हमने कैसे डोज कैलकुलेट करनी है पेशेंट की, लैब से देख के सारे फॉर्मूले होते हैं वो आपको आने चाहिए। फिर सबसे ज़रूरी जो होता है ना वो कम्युनिकेशन है। अगर आपका नॉलेज अच्छा है, आपकी कम्युनिकेशन वीक है, तभी भी आप अपना पैगाम कन्वे नहीं कर पाते और डॉक्टर आपकी बात नहीं समझता। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है और आपका नॉलेज थोड़ा वीक है तो आप फिर भी उसको प्रिवेंट कर सकते, लगा आपको पता है एक चीज़ आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो पेशेंट हार्म होने से पहले। लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन ही अच्छी नहीं है तो फिर ये भी एक फ्लॉ होता है फार्मासिस्ट का।
1: मींस के कम्युनिकेशन बिटवीन अमंग दी फार्मा डॉक्टर एंड द नर्सेस एंड पर्टिकुलरली विद दी पेशेंट एज वेल।
2: सर पेशेंट से हम कम्युनिकेट करते हैं लेकिन उसको हम इतनी टेक्निकल डिटेल नहीं बता सकते।
1: ओके
2: बस उसको हम ये बताते हैं कि आपने जैसे एक एंटीबायोटिक है टेट्रासाइक्लिन, आपने ये दूध के साथ नहीं लेनी,
1: ठीक है।
2: उससे क्या होगा कि थेरेपी खराब हो जाएगी, आपकी दवाई असर नहीं करेगी। लाइक उनको हम इस टाइप की काउंसलिंग करते हैं
1: कि एडीआर इस ये आ सकते हैं, साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, इसलिए आपने परेशान नहीं होना, बस इस हद तक पेशेंट को आप बताते हैं। ओके बाकी डोजिंग उसकी
2: वो सारा डॉक्टर से, डॉक्टर फार्मासिस्ट के साथ होती
1: है। वेल अच्छा रहमतुल्ला साहब, मुझे आप सिर्फ ये बताएं लास्ट में कि इसका पाकिस्तान में मुस्तकबिल क्या है, एज ए मैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की बात कर रहा हूँ, इसका पाकिस्तान में फ्यूचर क्या है?
2: सर इसका बहुत रोशन स्कोप है, बहुत फ्यूचर अच्छा है इसका। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि फार्मासिस्ट मार्केट में आ रहे हैं, अब जैसे सर आप जैसे उस्ताद उन्हें पढ़ा रहे हैं और अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ट्रेंड फार्मासिस्ट निकल रहे हैं, तो वो अपना रोल संभाल रहे हैं मार्केट में आके, और उनके किरदार से मतलब उनके इस रोल संभालने से एक अवेयरनेस क्रिएट हो रही है हॉस्पिटल्स में और डिफरेंट इदारों के अंदर, और वो इनकी हायरिंग को नोट करेंगे। लाइक डॉक्टर्स भी अब कहते हैं कि जी हम फार्मासिस्ट के बगैर दवाई नहीं देंगे, तो अब यहाँ से देख लें कि वो इम्पोर्टेंस उसकी कितनी बढ़ रही है फार्मासिस्ट की। फिर इसी वजह से फिर मज़ीद हायरिंग्स होंगी और एक बड़ा अच्छा एक स्कोप बन रहा है इस प्रोफेशन का, और इंशाल्लाह आगे और भी बेहतरी आएगी इसके अंदर। और आप देखें अगर के जितने भी पाकिस्तान के अच्छे हॉस्पिटल्स हैं लाहौर के, पंजाब के, वहाँ पे एक डेडिकेटेड फार्मेसी सर्विसेज डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हो रहा है, अब जहाँ नहीं था वहाँ भी हो रहा है। अब
1: मसलन कौन कौन से डॉक्टर साहब?
2: सर मैं बताऊँ आपको, PKLI है, एवर केयर है, शौकत खानम है, और इसके अलावा इंडस हॉस्पिटल है जहाँ पहले डॉक्टर्स है, नेशनल है। लाइक आप देखें अब जो भी अच्छा केयर प्रोवाइड कर रहा है वहाँ पर फार्मेसी डिपार्टमेंट है, एक डेडिकेटेड फार्मेसी सर्विसेज डिपार्टमेंट है।
1: ओके ओके अच्छा ये जो फार्मेसी करने के बाद लोगों का जो रुझान है वो हॉस्पिटल फार्मेसी की तरफ रिलेटिवली कम होता है, आपने शायद आपने नोट ना किया हो, मैं बहजियत उस्ताद बात करूँ, शौक ज़रूर जाहिर करते हैं और लेकिन वहाँ उस मिराज तक नहीं पहुँच सकते, एक साल दो साल करने के बाद वो छोड़ देते हैं वहाँ से कि हम दूसरी किसी फील्ड में चले जाते हैं फार्मेसी की, तो उसमें आप क्या समझते हैं कि क्या जो तालिब इल्म है या जो प्रोफेशनल है वो काम से भाग रहा होता है या स्टडीज़ से भाग रहा होता है, तो आप क्या समझते हैं कि कंटिन्यूस स्टडीज़ भी ज़रूरी हैं?
2: सर बिल्कुल, आपको अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ता है करंट जो प्रैक्टिसेस गाइडलाइंस आ रही होती हैं, और हॉस्पिटल की फील्ड सर ऐसी है कि आपने सारी ज़िंदगी पढ़ते ही रहना है, ठीक है, इसमें ये नहीं होता कि मैंने इतना पढ़ लिया तो बस अब बहुत हो गया, ऐसा नहीं होता, आप सारी ज़िंदगी स्टूडेंट रहते हैं। और जहाँ तक रुझान है बच्चों का, तो सर हमारी अगर मैं कहूँ हॉस्पिटल के अलावा अगर आप फील्ड देखें ना तो यहाँ पर ग्रोथ थोड़ी स्लो है, हो सकता है बच्चे जो होते हैं वो इस चीज़ को देखते हुए एक साल दो साल लगा के भाग जाते हैं, लेकिन सर जो एम करके जो पैशन के साथ आता है इस फील्ड के अंदर वो सर नहीं जाता। लाइक मैं हूँ, मैं डे वन से हॉस्पिटल में हूँ और अभी तक मुझे 5 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में, मैं आज तक हॉस्पिटल में ही काम कर रहा हूँ, यहीं पे एक्सेल कर रहा हूँ।
1: डॉक्टर साहब आखिर में मैं सिर्फ आपसे ये पूछूंगा कि आप आने वाले जो फार्मासिस्ट है हमारी लॉट है उसको क्या नसीहत करना चाहेंगे एज ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट?
2: सर एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट मैंने सर यही नसीहत करूँगा कि आपके पास जो फार्मडी में टाइम होता है उसको वेस्ट ना करें, अपना नॉलेज जो है ना वो इक्विप करें, जो आपके टीचर पढ़ाते हैं वो पढ़ें और जो नहीं पढ़ाते वो भी पढ़ें, ठीक है। आपके पास बुक्स होती हैं, आपके पास इंटरनेट जैसी फैसिलिटी, आपके पास गाइडलाइंस हैं, एक क्लिक दूर सब कुछ है आपके, बजाय आप मार्केट में आके मेरी तरह जब मैं मार्केट में आया मैंने देखा कि यार हमारी थ्योरी में और हमारी प्रोफेशन में तो बड़ा गैप था, वो मुझे अब जाके रियलाइज़ होता है, मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी उस टाइम ग्रेजुएट होने के बाद जो कि मैं पहले कर सकता था अगर मैंने ज़रा फोकस किया होता, ध्यान दिया होता। तो मेरे अपने जूनियर से, अपने यंग बच्चों से, फार्मासिस्ट से यही रिक्वेस्ट होगी या उनको एडवाइस होगी कि वो अपने टाइम ज़ाया ना करें, अपने प्रोफेशन पे फोकस करें, अपने नॉलेज पे फोकस करें और अपने स्किल्स बढ़ाएं फार्माकोलॉजी के, कैलकुलेशन के, ज्यूटिक्स के, और डिसाइड करें कि उन्होंने आगे किस फील्ड में जाना है। अगर आपने हॉस्पिटल में जाना है तो मैंने आपको बता दिया आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी है। अगर आपने इंडस्ट्री में जाना है तो आप देखें आपने कंपोजिशन, फार्मास्यूटिक्स, उसकी फार्मुलेशन व्हाटएवर जो भी होता है उस पर फोकस करना है आपने। अगर आपने मार्केटिंग में आना है तो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करें, नेटवर्किंग करें। अगर आपने एकेडेमिया में आना है तो आप देखें आपने एमफिल किस में करना है, पीएचडी किस में करनी है, ठीक है। अपने मेंटर्स बनाएं, अपने आइडल्स बनाएं, उनको फॉलो करें, उनसे सीखें।
1: बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि लास्ट में स्टडीज़ को फोकस करना चाहिए। और मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से कहा करता होता हूँ कि आपके पास वीकेंड्स आते हैं उनको यूटिलाइज़ करें, उनको अपनी डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए यूटिलाइज़ करें। आपके पास समर आता है, आप उसको अपनी जो प्रीवियस सेमेस्टर की जो डेफिशिएंसीज हैं, जो आपने क्लासरूम में पढ़ा या सीखा, उसको आप इक्विप्ड करें, उसको आप पॉलिश करें, उसके लिए उसमें फर्दर अपनी जान मारें ताकि आपका समर यूटिलाइज हो जाए, ताकि आप फील्ड में जाके आपको प्रॉब्लम ना हो किसी भी किस्म की। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके साथ बहुत सहर हासिल गुफ्तगू हुई। आप सामीन के लिए, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। आज का हमारा टॉपिक था रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द हॉस्पिटल फार्मेसी, एंड हमारे साथ गेस्ट थे डॉक्टर रहमतुल्ला असद जो एवर केयर हॉस्पिटल में क्लिनिकल फार्मासिस्ट का किरदार निभा रहे हैं काफ़ी अरसे से। बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब आपका कि आपने बहुत अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया, और इंशाल्लाह ताला आपसे गुफ्तगू रहेगी और नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला आपको दोबारा भी मदऊ करेंगे ताकि आप हमारे सामीन के लिए अच्छा सा कोई नॉलेज शेयर कर सकें, उनके साथ अपनी एक्सपर्टीज़ को शेयर कर सकें। और अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया
1: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
2: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
3: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: डेंगी मच्छर पानी में जन्म लेता है, इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगी के खात्मे के लिए जरूरी है। लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हरगिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
2: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: भी खेल ले।
1: मैं इसके बाद बैटिंग पे जाऊंगा।
0: बाइक चलाना सिखाऊंगा। हाँ
2: बच्चों के साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है। डरे नहीं और चीख के कहें,
3: खबरदार, छूना मना है।
4: वजारत इंसानी हकूक, हुकूमत पाकिस्तान। मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर।

0: अरफा करीम फैसलाबाद के नजदीकी गांव राम दिवाली में 2 फरवरी 1995 में पैदा हूँ। आपके वालिद अमजद करीम रंधावा एक आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर हैं। अरफा करीम सिर्फ 3 साल की उम्र में स्कूल जाने लगी। 9 वर्ष की उम्र में 2004 में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का इम्तहान पास करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तहलका मचा दिया।
1: दही परवरिश तो माँ ज्यादा बता सकती है क्योंकि राज तो माँ से होता है।
2: अरफा जब हमारे घर में आई तो आप लोग बहुत खुश थे कि अल्लाह ताला ने एक रहमत हमारे घर भेज दी है। और जैसे कि माओ के करीब होते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा, और जो उसकी इब्तदाई परवरिश या उनको बहुत करीब से देखने का मौका सबसे पहले माँ को मिलता है। वो बहुत छोटी सी थी जब से मुझे फील हो गया था कि उसके रिस्पॉन्स बड़े तेज़ हैं, हर काम उसने आम बच्चे की नस्बत जल्दी करना शुरू किया, मसलन बोलना, बैठना, चलना, ये सब कुछ उसने नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा जल्दी किया। और उसकी आँखें, आप अगर उसके बचपन की तस्वीरें देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि उसकी आँखें भी बोलती थी। और उस वक्त जब उसको बोलना भी नहीं आता था, वो बड़े खूबसूरत अंदाज में अपनी बॉडी लैंग्वेज से आपको जवाब दे देती थी कि हम क्या समझना चाह रहे हैं। फिर जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसको जब स्कूल में दाखिल करवाया बहुत छोटी एज में, दरमियान में उसकी दादी के साथ उसको अल्लाह ने जन्नत नसीब करे कुछ टाइम मिला, जो 2-2.5 साल की एज थी अरफा की जब उसकी दादी अम्मा फौत हो गई थी। उन्होंने बहुत सारा उसको कलमे, दुआ कनूत और आयतुल कुर्सी इस किस्म की चीज़ें सिखाई। अरफा 1.25 साल की थी जब नात भी पढ़ती थी, कौमी नगमा भी गाती थी। ये मेरे पास उसकी आवाज़ें अभी तक रिकॉर्ड हैं। हर चीज़ में वो नात हो, वो किरत हो, वो मौसीकी हो, वो डिबेटिंग हो, कंपेयरिंग हो, कोई दुनिया की ऐसी फील्ड नहीं थी स्कूल में रहते हुए जिसमें वो नमाया नहीं थी या जिसमें वो पीछे हट गई हो। हर चीज़ में भरपूर माशाल्लाह उसने हमेशा हिस्सा लिया।
0: अरफा ने दुनिया की कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का एजाज हासिल किया। इससे दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ, जिससे दुनिया में ये पैगाम गया कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है और ना ही पाकिस्तान में लड़कियों की तालीम पर पाबंदी है। अरफा करीम की तरह और बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे मुल्क में मौजूद हैं। हमें सिर्फ इनको तराशने की जरूरत है। जैसे कहते हैं, मोती तो बहुत होते हैं लेकिन सच्चा मोती हमेशा समुन्द्र की गहराई में मिलता है, और जब हम इसकी गहराई तक पहुंचे तब वो मोती आसमान तक जा पहुंचता है। दूसरी तरफ अरफा करीम ने ये पैगाम दिया कि तालीम में आगे बढ़कर दुनिया के सामने पाकिस्तान का असल चेहरा दिखाया जा सकता है। अरफा करीम ने एक इंटरव्यू में कहा था, अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो फिर जहन से झिझक को झटकना होगा। अगर आप झिझकते रहेंगे तो फिर हर काम में झिझकेंगे, और अगर आप पुर एतमाद होंगे तो फिर हर काम बाएतमाद होगा। लिहाजा झिझक को कभी अपने जहन पर काबिज ना होने दें। खुदादाद साहितों की मालिक, दुनिया की पहली कम उम्र तरीन आईटी एक्सपर्ट और तमगा हुसन कारकर्दगी की हामिल अरफा करीम रंधावा एक शायरा भी थी। उनकी उस वक्त की 19 अंग्रेजी नज़में इंटरनेट पर मौजूद हैं। इन्होंने 16 साल की उम्र में वो सब हासिल कर लिया जिसे हासिल करने की जुस्तजू में कई साल लोग तगोदों में लगे रहते हैं। पूरी दुनिया में सिक्का मनवाया और पूरी दुनिया के सामने मुल्क कौम का नाम रोशन किया। अरफा करीम जब बिल गेट्स से मिली तो इनके बारे में कहा गया कि पाकिस्तान का दूसरा रुख अरफा करीम है। अरफा करीम को पाकिस्तान के दूसरे चेहरे का नाम दिया, एक रोशन चेहरे का नाम।
3: ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबान इसके,

0: अरफा करीम को माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल की सनद दी गई। ये ना सिर्फ अरफा के वालदैन के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए फखर की बात थी। इसके अलावा दुबई में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माहिरीन की जानिब से 2 हफ्तों के लिए इन्हें मदु किया गया, जहां इन्हें मुख्तलिफ तोहफाजात और एजाजात दिए गए। अरफा करीम ने दुबई के फ्लाइंग क्लब में सिर्फ 10 साल की उम्र में तैयारा उड़ाने का सर्टिफिकेट भी हासिल किया। अरफा करीम को 2005 में इनकी सलाहियतों के एतराफ में सदारती पाकिस्तान यूथ अवार्ड से भी नवाजा गया। सिर्फ 10 साल की उम्र में इन्होंने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी हासिल किया, जिसको हासिल करने के लिए उम्र लग जाती है। दुनिया में से 1000 से ज्यादा मंदूबीन में से पाकिस्तान का मस्बत पहलू उजागर करने वाली सिर्फ अरफा करीम थी। अरफा करीम अपनी बीमारी से पहले नासा के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। 22 दिसंबर 2011 को मिर्गी का दौरा पड़ा। इनको फौरी तौर पर CMH अस्पताल पहुंचाया गया। वहां इनको दिल की तकलीफ भी शुरू हो गई, जिसकी शिद्दत से कोमे में चली गई। 2 जनवरी को बिल गेट्स ने अरफा के वालदेन से राब्ता किया और इनकी ख्वाहिश का इजहार किया कि अरफा का इलाज अपनी जेरे निगरानी अमरीका में करवाना चाहते हैं। बिल गेट्स के ही कहने पर अमरीकी डॉक्टर्स का पैनल बना, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अरफा करीम के इलाज में मुआवनत करते थे। 2012 में 26 दिन कोमे में रहने के बाद 14 जनवरी शब 10 बजे तमाम पाकिस्तान के चैनल्स पर इनकी अफसोसनाक खबर नशर हुई। पूरा पाकिस्तान सदमे से निढाल हो गया। कुछ लोग मर कर भी अमर हो जाते हैं, अरफा उनमें से एक थी। इनको खराज अकीदत पेश करते हुए हुकूमत ने बाद इस मर्ग लाहौर के एक पार्क और कराची का IT सेंटर अरफा करीम के नाम से मंसूब कर दिया। इसके अलावा इनके गांव को भी अरफा करीम का नाम दे दिया गया। कर्नल अब्दुल करीम, अरफा करीम के वालिद, जिनका काम मुल्क का दफा करना है, जो कि आर्मी ऑफिसर हैं, इन्होंने पाकिस्तान को एक रास्ता दिखाया कि पाकिस्तान का नजरियाती सरहदों पर दफा अरफा करीम जैसी बेटियां हैं, जिनसे दुनिया के सामने पाकिस्तान का नाम रोशन किया जा सकता है।
1: और उसके किस्मत में अल्लाह ताला ने हमेशा ही कामयाबियां डाली। वो अपनी किस्मत साथ लेके आई थी, चमकता सितारा थी अपने नाम की तरह। अरफा का मतलब ही होता है कि बुलंद तरीन, सबसे आला, सबसे अरफा। वही मकाम उसको दुनिया में मिला है और दुआ हूँ कि वही मकाम उसको अल्लाह ताला के हाथ नसीब हो।
0: पाकिस्तान की बेटी पूरी इसरारियत के पर्दों में छुपी हुई परी की तरह इस दुनिया से कूच कर गई।

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया
1: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

इस सुरौर ताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 UCP की दुनिया, UCP की दुनिया।
1: www.ucp.edu.pk FM 92.6 Live Station of the Nation.

अगर आपका कानूनी हक हुकूमत पंजाब के किसी सरकारी इदारे में ताखीर या बद इंतजामी का शिकार है और ये किसी अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं, तो फिर आप दफ्तर मोहतसिब पंजाब से फौरी राब्ता करके अपना कानूनी हक जल्द हासिल करें। दफ्तर मोहतसिब सूबाई हुकूमत से मुतालिक अवामी तकालीफ और शिकायात के हल के लिए 36 अजला में सरगर्म अमल है। आप अपनी दरख्वास्त दफ्तर मोहतसिब पंजाब को बजरिया डाक, वेबसाइट, मोबाइल पोर्टल या मुतालिका जिला के मोहतसिब ऑफिस में बजाते खुद जमा करवा सकते हैं। मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए मोहतसिब ऑफिस की हेल्पलाइन 1050 पर राबता करें। अवामी हक का मुहाफिज दफ्तर मोहतसिब पंजाब।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
0: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: 24/7 only on FM 92.6 UCP ki duniya.
1: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
2: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।
3: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।